0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में

बंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के

0: खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
4: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप। नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। FM रेनबो पर।

दस बजकर 11 मिनट है। चूड़ी की घड़ी का समय 107 एफएम रेनबो पर। शर्मिष्ठा फिर एक बार आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और सुबह से म्यूजिकल जर्नी के साथ जुड़े हैं आप और हमारी ये कार्यक्रम। तो चलिए इस बार लेकर आते हैं हम कुछ खास कुछ अलग, क्योंकि सुबह का कार्यक्रम यानी कि रेनबो में सुबह का कार्यक्रम जो कि जुड़ा होता है पूरे एक घंटे के लिए और समय रहता है 10:02 से लेकर पूरे 11 बजे तक। और इस एक घंटे में हम करते हैं नॉन स्टॉप बातें, साथ ही साथ एक से बढ़कर एक गीतों का सिलसिला तो चलता ही रहता है इसी कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं आपके रेडियो दोस्त शर्मिष्ठा के साथ। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून किया है 107 एफएम रेनबो चैनल के अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारे प्रसारण वक्त आप सुन पा रहे हैं। और मौसम के बारे में मैं क्या ही कहूँ, जी हाँ वाकई में मौसम जो है वो काफ़ी खुश मिजाज है और आखिर हो ही क्यों ना, इसी की तो डिमांड, इसी की तो इच्छा लोग काफ़ी दिन से कर रहे थे, है ना। जी हाँ, गर्मी से परेशान लोग आखिर चाहिए यही रहे थे कि भाई कब बरसात हो और कब ये जो परेशानी वाला जो समय है वो थोड़ा सा कम हो जाए। अब ये ना कहिएगा कि भाई बारिश हो रही है तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। भाई ये जो मौसम शुरू हुआ है आखिर इसका मज़ा तो उठा लीजिए, उसके बाद तो ये समय जो है वो चला ही जाएगा। और भला कोई अपनी मुट्ठी में अपने साथ समय को बांध पाया है, नहीं ना। इसीलिए जो भी समय आता है हर समय का अपना एक अंदाज होता है और एक हर एक अंदाज के साथ जीना चाहिए हर एक मौसम को। तो लेकिन फिलहाल बरसात का मौसम है और इस मौसम के साथ ना जुड़ी होती है बहुत सी यादें। जी हाँ, अगर ये कहें कि इस मौसम के साथ हम खोल सकते हैं यादों का पिटारा तो बात जो है वो बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकती है। जी हाँ, और इस पिटारे में ना न जाने कितने ही यादें जुड़ी होती हैं। अगर बचपन की बात करें तो बचपन में मौसम के साथ जुड़ी हुई अनगिनत यादें

हम सबकी यादों के पिटारे में है कि नहीं, तो यही बातें होंगी ये सारी यादों के पिटारे में, और इसके अलावा कुछ और भी गपशप होंगी क्योंकि कार्यक्रम का नाम ही है नॉनस्टॉप गपशप। तो चलिए गपशप तो करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक प्यारा सा गीत फिलहाल, और जी हाँ फिलहाल एक गीत, और उसके बाद तो बातें होती ही रहेंगी, लेकिन इस वक्त अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये गीत आप सभी सुनने वालों के लिए है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

10:26 संग है आप शेर मिश्रा के सुन रहे हैं इस मज़ेदार से कार्यक्रम को जिसका नाम है नॉन स्टॉप पर गपशप। और नॉन स्टॉप गपशप करते करते बहुत सी ज़रूरी बातें भी आप तक पहुंचाई जाती हैं। और फिलहाल मैं बात कर रही थी यादों के पिटारे को लेकर, और यादों का जो पिटारा है वो जुड़ा हुआ है इस वक्त इस खूबसूरत मौसम को लेकर, यानी कि बरसात के मौसम के साथ आपकी कई सारी यादें जुड़ी होती हैं जो कि एक पिटारा बनकर रह जाती है। और कभी कभार जब हम उस पिटारे को खोलते हैं ना, जी हाँ, फ्री समय में जब आप खाली बैठे हैं और खूबसूरत सा मौसम जब साथ हो, तो ऐसे में जो पिटारा है, यादों का पिटारा है, वो अपने आप खुल ही जाता है। और अच्छा, इस पिटारे में ना एक चीज़ बहुत ही साधारण है, जी हाँ, हमने बचपन में इस चीज़ को तो किया ही किया है, लेकिन इस वक्त, जी हाँ, इस वक्त आज के समय में उसी चीज़ को अगर करने के बारे में सोचे तो फिर ऐसा लगता है कि कोसों दूर अगर उस चीज़ से रहा जाए तो बहुत अच्छा है। मैं बात कर रही हूँ बरसात हो जाने के बाद जब रास्ते में पानी और कीचड़ से भर जाता है, और उस पानी और कीचड़ के ऊपर से जब हमें चलना होता है, तब क्या हम उतने फ्रीली, उतने आराम से चल पाते हैं? नहीं ना। और ऐसे में ऐसा लगता है कि भाई फिर से उसी कीचड़ और दलदल से होकर गुजरना होगा, और उसके बाद न जाने पैरों का क्या हाल होगा और कपड़ों का हाल क्या होगा, ये तो खैर कहने की ज़रूरत नहीं है। खैर, ये जो सोच है वो हमारी आज की सोच है, लेकिन कई सालों पहले की बात अगर याद करें तो इसी कीचड़ से गुजरने के लिए हम बेताब हुआ करते थे, जी हाँ। और बस ऐसा लगता था कि घर से अगर परमिशन मिले तो फिर ये जो जमा हुआ पानी है इसमें उछलकर अपनी जो दिल की खुशी है उसे किस तरीके से हम जाहिर करें, ये उस वक्त का मामला था। लेकिन वही हाल अगर आज हो, जी हाँ, वही मौका अगर आज मिले तो फिर, खैर, मौका मिलने के बावजूद भी हमारा दिल जो है वो आज उसी चीज़ को करने से इनकार करता है ना, तो कितना फ़र्क है। और ये जो बचपन की बात मैं कर रही थी कि भाई मौका मिले ना मिले, बस जमा हुआ पानी मिलना चाहिए, और मेरे ख्याल से अपने बचपन में ज़्यादातर बच्चों ने इस चीज़ को किया होगा। जी हाँ, जो अगर मुझे इस वक्त सुन रहे हैं और वो मंद मंद मुस्करा रहे होंगे कि ऐसा तो हमने भी किया है ना, कि पानी और कीचड़ दिखा नहीं कि छप से उस पर हमने छलांग दे दी, और उसके बाद क्या होगा इसके बारे में आखिर हमने सोचा थोड़ी ही था। चाहे जूते खराब हों, चाहे कपड़े खराब हों, चाहे माँ से डांट पड़े, चाहे

कुछ भी हो जाए, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे हमने उस कीचड़ वाले पानी में छलांग देकर कम से कम अपने दिल की जो उम्मीद है जी, दिल की जो खुशी है उसे तो थोड़ा बरकरार रखा। लेकिन वह सिचुएशन अगर आज हो तो फिर हमारा जो मन है वो नहीं मानता। तो इस तरह की छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें हैं जी हाँ, जो कि आज यादों के पिटारे में कैद है। तो फिलहाल बातें होंगी और भी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बातें तो नहीं है ना, क्योंकि वही नॉनस्टॉप गपशप का सिलसिला है। तो गपशप तो होती रहेंगी, लेकिन फिलहाल सुनवाऊंगी आपको एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक और उसके बाद फिर से बातें, क्योंकि कार्यक्रम का नाम ही है नॉनस्टॉप गपशप।

0: बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
2: दस बज के 36 मिनट, संघ्या आप शर्मिशा के सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप, और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए अपनी ट्यून किया है 107 एफएम रेनबो के अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी हमारे प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। तो चलिए फिलहाल तो आज के इस कार्यक्रम में बरसात के मौसम को लेकर यादों के पिटारे को हम जोड़ रहे थे, लेकिन यादों के पिटारे से और भी होंगी बहुत सी बातें, लेकिन फिलहाल कर लेते हैं स्पेशल वाले बर्थडे को लेकर बात। यानी कि बताऊं आपको कि बॉलीवुड की दुनिया में आज के दिन आखिर कौन मना रहे हैं अपना हैप्पी वाला बर्थडे। जी हाँ, जिनके बारे में बात करूंगी, जिन शख्स के बारे में बात करूंगी, फिर एक बार बॉलीवुड की दुनिया से तो जुड़े ही हैं, इसके अलावा उनकी अनगिनत फिल्मों को भी हमने देख ली है। बात कर रही हूँ अभिनेता अर्जुन कपूर को लेकर। अर्जुन कपूर मनाते हैं आज के दिन अपना हैप्पी वाला बर्थडे, और अर्जुन कपूर को हम बॉलीवुड की फिल्मों के जरिए जानते हैं। जी हाँ, अर्जुन कपूर एक जाने माने अभिनेता हैं जो कि मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म हुआ आज ही के दिन 1985 को मुंबई में। उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी साल 2012 में, और सुपरहिट फिल्म इश्क ज़ादे से उनकी फिल्मों की शुरुआत हुई थी। इश्क ज़ादे से डेब्यू करने के बाद अर्जुन कपूर ने कई सफल हिंदी फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई है। उनके कुछ प्रमुख फिल्मों की अगर बात करें तो साल 2014 में फिल्म आई थी टू स्टेट्स, और उसी साल फिर एक बार एक फिल्म आई थी जिसमें हमने अर्जुन कपूर के बेहतरीन अभिनय को देखा था। फिल्म का नाम था गुंडे। 2016 में की एंड का फिल्म रिलीज हुई थी। इसके अलावा हाफ गर्ल फ्रेंड और पानीपत के अलावा संदीप और पिंकी फरार जैसी फिल्मों में अर्जुन कपूर के बेहतरीन अभिनय को हमने देखा था। फिल्मी दुनिया में आने से पहले उन्होंने कल होना हो जो कि रिलीज हुई थी साल 2003 में, उस फिल्म में सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया था अभिनेता अर्जुन कपूर ने। तो चलिए सभी चाहने वालों की ओर से हैप्पी वाला बर्थडे अभिनेता अर्जुन कपूर को।

अगर आपका दिल भी यही कह रहा है कि वीकेंड शुरू हो रहा है और ऐसे में बरसात के मौसम में कहीं ना कहीं घूमने निकलना चाहिए, तो बिल्कुल ख्वाब से सफर को सजा लीजिए और निकल पड़िए अपनी मंजिल की ओर, क्योंकि मानसून के मौसम में जी हाँ घूमने का एक अलग ही मजा होता है। हर तरफ हरियाली, ठंडी हवाएं और खूबसूरत नज़ारे ट्रिप में चार चांद लगा देते हैं। बरसात के मौसम में ज़्यादातर लोग रोड ट्रिप को ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप भी रोड ट्रिप के बारे में सोच रहे हैं तो भाई सोचना वोचना बंद करिए और बरसात के मौसम में जब वीकेंड शुरू हो रहा है तो निकल पड़िए अपने पसंदीदा मंजिल की ओर। और अब तक तो आप माइक्रो वेकेशन के बारे में सोच ही चुके होंगे। जी हाँ, माइक्रो वेकेशन इन दिनों लोगों का घूमने का एक पसंदीदा तरीका बन गया है। खासकर जेन ज़ी लोग माइक्रो वेकेशन को खूब पसंद करते हैं। इनमें भी उन लोगों की तादाद सबसे ज़्यादा है जो 5 दिन ऑफिस वर्क करते हैं और 2 दिन का वीक ऑफ मनाते हैं। अगर आप अपनी छुट्टी घर पर बिताते बिताते बोर हो चुके हैं, ऊब चुके हैं, तो आप भी माइक्रो वेकेशन के बारे में सोच सकते हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि भाई सोचते ही रह गए और ये जो सुहाना सफ़र, सुहाना मौसम है, ये आपके हाथ से फिसलता चला जाए और उसके बाद आखिर करना क्या है। जी हाँ, वही पछताना, क्योंकि भाई बरसात का मौसम जो है वो आपके लिए बैठा तो रहेगा नहीं, है ना। और मौसम गुजरता चला जाए उससे पहले भाई वीकेंड तो आते रहेंगे, लेकिन किसी भी वीकेंड को चुन लीजिए और अपनी पसंदीदा जगह पर इस मौसम के रहते रहते अपने माइक्रो वेकेशन के बारे में प्लान कीजिए और घूम कर आ जाइए। तो फिलहाल हम घूम रहे हैं अपने पसंदीदा कार्यक्रम के इर्द गिर्द, यानी कि जिसका नाम है नॉनस्टॉप गपशप। और नॉनस्टॉप गपशप करते करते पसंदीदा गीत, जो कि मेरे भी गीत है और मेरे ख्याल से आपके भी पसंदीदा गीत शायद इसी कार्यक्रम में शामिल है। तो चलिए, फिलहाल 13 होने लगा हूँ। जी हाँ, कभी कभार ये मौसम इतना खूबसूरत हो जाता है और ऐसा लगता है कि वाकई में ये मौसम जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ही एक अलग अंदाज लेकर हमारे सामने मौजूद है। तो चलिए, ये प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

आऊंगा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, यानी कि इस फिल्म के साथ एक चमत्कार घट चुका है। बंटवारे के दौर की प्रेम कहानी वाली इस फिल्म ने धीमी शुरुआत के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर अपनी जगह बना ली है और अब देश भर के कई सिनेमाघरों में हाउसफुल चल रही है। फिल्म मेकर के लिए ये एक बेहद ही खुशी का पल है। वे खुद कई थिएटर जाकर दर्शकों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और इसे इम्तियाज अली किसी चमत्कार से कम नहीं समझ रहे। तो दूसरी ओर माधुरी दीक्षित अपने फिल्म माँ बहन को लेकर बहुत सी बातों में एक ज़रूरी बात उन्होंने कही है कि जो चीज़ खुशी दे वो करना चाहिए। जी हाँ, उनका कहना है कि जो चीज़ आपके दिल को भाए, जो चीज़ करने से आपके दिल को खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, आप खुश रह पाते हैं, उस चीज़ को आपने ज़रूर ज़रूर ज़रूर करना चाहिए। और अगर लोगों की बात सुनकर आप बैठ गए और अपने दिल की खुशी, दिल की बात को अगर आप ठुकराते हैं तो उसके बाद पछतावे के अलावा और मिलता ही क्या है। ये मैं नहीं कह रही बल्कि कहना है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का। तो वाकई में ये बहुत सच बात है ना, कि आखिर जो चीज़ आपको खुशी दे वो चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए। और आखिरकार इसका जो रिज़ल्ट है वो यही तो मिलता है कि अगर हम खुश रहते हैं तभी तो हम हमारे आसपास जुड़े लोगों को खुशी बांट पाते हैं। तो चलिए, फिलहाल खुशी बट रही थी कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप के जरिए, यानी कि ढेर सारी बातें और बातों के साथ साथ एक से बढ़कर एक गीतों का सिलसिला फिलहाल चल रहा था इसी कार्यक्रम में। लेकिन क्या करें, ये जो खुशी है ना, ये ज़्यादा देर के लिए नहीं टिकती, क्या ही करें, क्योंकि समय जो है वो हमारे बस में तो नहीं है। और फिलहाल सूर्य की घड़ी बता रही है कि इस कार्यक्रम को करना होगा यहीं पर समाप्त और जल्द से जल्द मुलाकात होगी, बात होगी आपसे फिर से। जी हाँ, 100.1 FM गोल्ड पर लेकर आऊंगी आपके लिए कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद। और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून करना है फिर एक बार 100.1 FM गोल्ड, समय रहेगा 11:10। लेकिन उससे पहले कार्यक्रम का अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, जी हाँ, आपके खैरियत की दुआ मांगते हुए करते हैं इस कार्यक्रम को समाप्त, मिल रहे हैं बहुत जल्द। फिलहाल ट्यून रहिए उस साथ FM रेनबो के साथ, सुन रहे थे आप अपने रेडियो दोस्त शर्मिष्ठा को। कार्यक्रम चल रहा था नॉनस्टॉप गपशप।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: আবহাওয়া সংক্রান্ত একটি ঘোষণা। 10:10 পাওয়া খবর অনুযায়ী, আবহাওয়া দপ্তরের খবর অনুযায়ী, সেই সময় থেকে 2-3 ঘন্টার মধ্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং মালদা জেলার বেশ কিছু অংশে 30-40 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব সতর্ক থাকা প্রয়োজন। ঘোষণাটি শেষ হল।
4: কালজয়ী বাংলা গানের ধারা ছুঁয়ে যাক মন। শুনছেন গানদরিয়া 107 FM রেইনবোতে। গানদরিয়া, গানদরিয়া ছুঁয়ে যাক মন, ছুঁয়ে।

मुर्दा मुसलिन आज फांगाई से नीत बेदाकत मुर्दा मुसलिन आज फांगाई से नीत मुन रोम जाने कोई रो कर देते ये लो पूती पीत घुमन रोम जाने रोई रो कर देते আদি করবি ঈদের নাম আদরে মন সেই সেইদ কাজে আদি করবি ঈদের নাম আদরে মন সেই সেইদ।

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ लेकर ठीक 3:03 पर, 3 का तड़का। पर सबसे पहले भाई हमारे एंटरटेनमेंट न्यूज़ की शुरुआत करने से पहले हम बात कर लेंगे थोड़ी परियोजना प्रस्तुति की।
1: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
0: तो आज परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत हम बात करेंगे राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण अभियान के बारे में। दोस्तों, किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसके युवा होते हैं। ऊर्जा, उत्साह, नए विचार और बदलाव लाने का जज्बा, यही युवाओं की पहचान होती है। इन्हीं युवाओं को आगे बढ़ाने और उनकी क्षमताओं को निखारने के उद्देश्य से राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक सहभागिता और रोजगार के अवसरों से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बनाना है। दोस्तों, आज का युवा केवल नौकरी पाने वाला नहीं बल्कि अवसर पैदा करने वाला भी हो सकता है। इसलिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से युवा को उद्यमिता, डिजिटल कौशल, नवाचार और व्यक्तित्व विकास की दिशा में प्रोत्साहित किया जा रहा है। राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण की सोच ये मानी जाती है कि जब युवा सशक्त होंगे तब देश सशक्त होगा। यही कारण है कि खेल, संस्कृति, स्वयं सेवा, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र निर्माण से जुड़े उन अनेक कार्यक्रमों में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारे युवाओं की प्रतिभा और क्षमता ही देश के उज्ज्वल भविष्य की नींव है। इसलिए ये आवश्यक है कि उन्हें सही दिशा, अवसर और संसाधन उपलब्ध कराया जाए। तो आइए हम अपने युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, उनकी प्रतिभा का सम्मान करें और एक ऐसे भारत के निर्माण में योगदान दें जहां हर युवा अपने सपनों को साकार कर सके।
1: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
2: রাখো ইন্ডিয়া পোস্ট এর উপর। বিশদে জানতে আপনার কাছের পোস্ট অফিসে যোগাযোগ করুন বা ভিজিট করুন indiapost.gov.in।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का। टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर। टीम

0: Karta, Dinka Karta, Dinka Karta. 107 FM Rainbow Bird, Rainbow Bird.
1: तो तीन का तड़का, जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का। और तीन का तड़का में भाई जहाँ बातें होती हैं एकदम चटपटे बॉलीवुड न्यूज़ की, और साथ ही साथ रहते हैं ज़बरदस्त गाने भी, तो क्यों ना भाई इस प्यारे से मौसम में कार्यक्रम की शुरुआत एक ज़बरदस्त गाने के साथ ही, एक एनर्जी वाले गाने के साथ ही शुरुआत की जाए। जैस्मिन सैंडलेस, गैरी सैंधू आपके लिए।

चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन के तड़के की। पहले तड़के से जहां इस हफ्ते मनोरंजन का भरपूर तड़का देखने को मिलेगा ये बताया जा रहा है। जी हाँ, 24 से 27 जून के बीच कई बड़ी फिल्में वेब सीरीज रिलीज होने वाली है OTT प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले बात करते हैं राजा शिवाजी की, जो रिलीज होगी 26 जून को, जिसमें रितेश देशमुख छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका में नजर आएंगे। इसी दिन बाहुबली द टॉर्च बियरर नामक डॉक्यूमेंट्री भी आएगी, जो बाहुबली फ्रेंचाइज की सफलता और उसके प्रभाव को दिखाएगी। वहीं साथ ही साथ 26 जून को ही द परफेक्ट फैमिली स्ट्रीम होगी। ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जो पारिवारिक तनाव और रिश्तों की उलझनों से जूझते हैं। साथ ही साथ अवतार की फायर एंड एश 24 जून से उपलब्ध है, जबकि लोकप्रिय सीरीज द बियर का चौथा सीजन 25 जून को रिलीज होगा। और 27 जून को रियलिटी शो लॉकअप का नया सीजन आएगा, जिसे फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट करते नजर आएंगे। इसके अलावा अवतार द लास्ट एयरबेंडर सीजन 2, ब्लास्ट लिंगम अलायंस एंड इन द हैंड ऑफ डेंट जैसी कई नई पेशकश भी दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगी।

ओटीटी पे इस बार एंटरटेन होने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। वैसे भी लंबा वीकेंड है, फ्राइडे सैटरडे संडे, भाई लंबी छुट्टी, और साथ ही साथ अगर बिंज वॉच किया जाए तो कैसा रहे वीकेंड। फिलहाल चलते हैं, सोचेंगे कि, और साथ ही साथ अच्छी इंटरेस्टिंग मूवीज़ भी रिलीज़ होने को है बहुत ही जल्दी, तो देखिए किस तरह से वीकेंड इस ज़बरदस्त वेदर में ज़बरदस्त तरीके से हम गुजार सकते हैं। फिलहाल श्रेया घोषाल की आवाज़ में आमी जे तुमार, भूल भूलैया 3 से

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

तो चलिए इस छोटे से ब्रेक के बाद चलिए बढ़ते हैं आगे दिन का तड़का में अगले तड़के की ओर हमारे कदम रखते हैं। बॉलीवुड के सिंह हम एक बार फिर दमदार एक्शन अवतार में लौटने के लिए तैयार है। अभिनेता अजय देवगन ने अपने पिता और दिग्गज एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन की जयंती पर अपनी नई फिल्म चौहान का ऐलान कर दिया है। साथ ही फिल्म की पहली झलक भी रिलीज की गई है जिसने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी। करीब 2.5 मिनट की इस झलक में कश्मीर की पृष्ठभूमि दिखाई गई है जहां युवाओं को गुमराह करके उनके हाथों में पत्थर थमाए जाते हैं। इसी माहौल के बीच अजय देवगन का दमदार एक्शन अवतार सामने आता है। फिल्म में वो चौहान नाम के किरदार में नजर आएंगे जो आतंक और हिंसा के खिलाफ मोर्चा संभालता दिखाई देता है। ये फिल्म अजय देवगन के निर्माता निर्देशक आनंद एल राय के साथ पहली साझेदारी भी होगी। फिल्म का निर्देशन नीरज यादव कर रहे हैं और इसे 1 अक्टूबर 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी है। तो देखना दिलचस्प होगा कि बड़े पर्दे पर अजय देवगन का ये नया एक्शन मिशन दर्शकों के दिलों पर कितना असर छोड़ता है। फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आगे बढ़ते हुए हम सुनेंगे फिल्म क्रियो से दिलजीत दोसंझ और बादशाह की आवाज़ में नैना।

दोस्तों, कार्यक्रम के आखिर तक ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, पर उससे पहले चलिए मौसम का अपडेट ले लेते हैं। जरा मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है 26 जून 2026 दोपहर 2:48 बजे से अगले 2-3 घंटों के दौरान पुरुलिया, पश्चिम बर्धमान और बांकुड़ा जिले के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे के गरज चमक वाले बादल, बिजली गिरने और हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज और झोंकेदार हवाएं भी चल सकती है। यदि आप इन इलाकों में हैं तो खुले मैदान, पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बिल्कुल बचें। मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थान पर रहें और बिना जरूरत घर से बाहर निकलने से परहेज करें। फिलहाल इतना ही। मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और सुरक्षित रहिए। और मौसम की जानकारी के साथ साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल के बारे में बात कर लेते हैं। आखिरकार दोस्तों, ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और बॉक्स ऑफिस पर इसकी शुरुआत उत्साहजनक भी रही है। फिल्म के पेड प्रीव्यू शोज से पहले ही अच्छी कमाई देखने को मिली। वहीं रिलीज के दिन ही यानी कि आज ही सुबह के शोज में फिल्म ने करीब 12% ऑक्यूपेंसी दर्ज की और शुरुआती रुझानों के मुताबिक सुबह 11 बजे तक लगभग 2.36 करोड़ रुपये का कलेक्शन भी किया। 30 से ज्यादा सितारों से सजी इस मल्टी स्टारर कॉमेडी को लेकर ट्रेंड एक्सपर्ट्स ने उम्मीद की है कि शाम और रात के शोज में रफ्तार बढ़ने के साथ फिल्म पहले दिन 10 से 12 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा तो कारोबार कर ही लेगी। हालांकि अंतिम आंकड़े दिन खत्म होने के बाद ही आएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि वेलकम फ्रेंचाइजी की ये नई पेशकश दर्शकों को कितना हंसा पाती है और बॉक्स ऑफिस पर कितनी लंबी रेस दौड़ पाती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे और सुन लेते हैं हमारा अगला गाना जो है फिल्म शिद्दत से अंकित तिवारी के आवाज में, रोमांटिक ट्रैक। और इस गाने के साथ ही मैं भी लूंगी आपसे विदा। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे एनसीईआरटी का विशेष कार्यक्रम। तब तक के लिए बने रहिए 107 FM रेनबो है ये, और मिलते हैं ठीक थोड़ी ही देर में 100.1 FM गोल पर लेकर चायन क्लासिक। उसके बाद फिर छाया लोक तो रहेगा ही 7:02 पर FM रेनबो में।

0: शबदंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में

0: रूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहां घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहां पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहां के बहुत से जीवों की आंखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहां चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं, और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहां उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवाकोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है, और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये, मन ही की परतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।

0: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
1: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
0: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
1: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
2: Stephen, happy birthday to you!
3: Happy birthday to you, Stephen!
4: Thank you. How are you?
5: Happy birthday, Stephen! Thank you,
4: congratulations!
5: Thank you, John! Thank you so very much. Hi, Martin. How are you?
2: Oh, fine!
5: Thanks for coming in. Please come in. Please.
3: Oh, yes, sure. Yes. Why not?
2: Come!
3: Come!
2: John, please come here.
3: Oh, sure.

0: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
1: Oh

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ।
3: जी।
2: आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ। और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं नहीं,
2: देखिए आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओ।

0: रहने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुशदिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ५८ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे।

0: और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे, लेकिन वे बोलते कैसे थे ये जानना दिलचस्प होगा।
1: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
2: प्रोफेसर डेनिस
3: जी,
2: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
3: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
2: ओह।
3: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
2: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
3: जी।
2: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
3: तो लीजिए, सुनिए।
4: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
1: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
0: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
1: उनके सभी शोधों की यह विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
0: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
5: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
1: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
0: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
6: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
1: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
7: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
0: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
8: यदि आप शारीरिक रूप से

0: दिव्यांग हैं, तो मन को दिव्यांग न होने दें।
1: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
2: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहां स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
1: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
4: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम आ जाओ, आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली।
5: हाँ।
4: गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड। तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
6: आग का गोला?
4: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दूं प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
5: सूरज।
4: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
7: बहुत आसान पूछते हो।
4: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं
7: कि अगली बार में बहुत मुश्किल।
4: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूँ, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियाँ तुम्हारे पास होती है ना?
5: हाँ।
4: मैं कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
7: मुझे पता है सूरज आग का गोला होता है।
4: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
8: वो तारा होता है।
4: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
9: वो रात और दिन भी बनाता है।
4: एकदम सही एकदम सही।
10: वो हमें धूप भी देता है।
4: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
7: धूप से इतना अच्छी बात भी होती है।
4: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
7: विटामिन डी।
4: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश बहुत अच्छे।
10: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
4: हाँ हाँ बिल्कुल।
7: पेड़ों को खाना भी देता है।
4: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
7: धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
4: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं, और लगता क्या है जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
7: हाँ।
9: जब भी तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
4: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे हैं, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
7: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
4: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है

0: चलती है, तो ऐसा लगता है वो भी तेजी चल रही है।
1: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
2: ना।
1: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
2: हाँ, और सर्दियों में अच्छा लगता। तो बच्चों, सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें

0: नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका 107 FM रेनबो पर। मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ। ठीक 7:03 हो रहा है स्टूडियो की गर्मी और आप सुनने वाले हैं
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
0: और आज है शुक्रवार का दिन, यानी के दिन है
2: सेल्यूलॉइड सुपर हिट्स।
0: जी हाँ, सेल्यूलॉइड सुपर हिट्स का दिन है, जहाँ बातें होंगी फिल्मों के पर्दे के पीछे की कहानियां हम सुनेंगे, साथ ही साथ ढेर सारी बातें होंगी और जबरदस्त गाने होंगे। और आज जिस जॉनर को मैं लेके चलने वाली हूँ वो है सस्पेंस थ्रिलर फिल्में। जी हाँ, बॉलीवुड की सस्पेंस थ्रिलर फिल्में। रात दिन से अलग होती है क्योंकि दिन में हम आंखों पर भरोसा करते हैं और रात में हम अपने अंदाजों पर। अंधेरा हमेशा डर नहीं लाता, कभी कभी वो सवाल लेकर आता है, ऐसे सवाल जिनके जवाब हर किसी के पास नहीं होते। आज की इस महफिल में हम किसी भूत, किसी साई या किसी श्राप की बात नहीं करेंगे। आज बात होगी उन फिल्मों की जिन्होंने हमें डराया नहीं बल्कि हमारी सोच पर शक करना सिखाया, जहां हर करदार कुछ छुपा था, जहां हर मुस्कुराहट एक मुखौटा थी और जहां सच हमेशा आखिरी रील में सामने आया। तो अगर आपको पता लगता है कि आप लोगों को एक नज़र में पहचान लेते हैं, तो अगर आपको यकीन है कि आप किसी कहानी का अंत पहले ही समझ सकते हैं, तो आज की रात शायद आपका ये भरोसा

होने वाला है, क्योंकि सस्पेंस की दुनिया में सबसे खतरनाक चीज हत्यारा नहीं होता, उसे सबसे खतरनाक होती है आपकी अपनी सोच। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले गाने से।

तो दोस्तों, जो चलिए शुरुआत करते हैं उस फिल्म से जिसने साबित किया कि पूरी कहानी सिर्फ 2-3 कमरों में भी सुनाई जा सकती है जी, और फिर भी दर्शक आखिरी पल तक अपनी सीट से हिल ना पाए। 1969, जब ज्यादातर फिल्मों में गीत थे, रोमांस था, बड़े बड़े सेट थे, तब एक फिल्म आई थी जिसने लगभग सब कुछ बदल दिया। इत्तेफाक, न गाने, न कॉमेडी, न किसी तरह का फॉर्मूला, बस एक रात, कुछ लोग और एक ऐसा राज जो लगातार गहराता चला जाता है। उस दौर में बिना गानों के फिल्म बनना अपने आप में जोखिम था। कई लोगों ने कहा दर्शक इसे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन निर्देशक ने कहानी पर भरोसा रखा। ज्यादातर शूट इंडोर लोकेशंस पर हुआ क्योंकि मकसद दुनिया दिखाना नहीं, दिमाग के अंदर का दबाव दिखाना था। कैमरा बार बार किरदारों के बेहद करीब आता, लेकिन उनके चेहरे पर छोटी सी घबराहट भी दर्शक पढ़ सके ताकि। लाइटिंग भी जानबूझकर सॉफ्ट रखी गई, कोई ड्रामेटिक शो नहीं, क्योंकि यहाँ डर अंधेरे से नहीं, झूठ से पैदा होता है। और यही वजह आज भी इत्तेफाक देखते हुए आपको लगता है कि शायद अभी कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अगर एक घर इतने सारे राज छुपा सकता है, तो सोचिए एक पूरा टापू क्या क्या छुपा सकता है। बात करेंगे अगले फिल्म की, पर उससे पहले आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगी। सवाल यही है कि ऐसी कौन सी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है जिसे आप दोबारा सिर्फ उसके जो ट्विस्ट है, एंड की जो ट्विस्ट है, उसके लिए देखना चाहेंगे। एक बार फिर से सवाल पूछ लेती हूँ कि ऐसी कौन सी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है जिसे आप दोबारा सिर्फ उसके ट्विस्ट के लिए देखना चाहेंगे। सोचिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, सुन लेते हैं हमारा अगला गीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: तो बात कर रहे थे हम सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की, और अगली फिल्म की बात जो जब हमने छेड़ी तब एक टापू की बात आई, जहां हर मेहमान संदेह के घेरे में था और हर कदम मौत के थोड़ा करीब ले जाता था। गुमनाम एक वीरान द्वीप, कुछ अजनबी और एक एक करके होती मौतें। आज इसे देखते हुए ये मर्डर मिस्ट्री लगती है, लेकिन जब ये फिल्म बनी तब इस तरह की कहानी हिंदी सिनेमा के लिए लगभग नहीं थी।

सबसे बड़ी चुनौती पता है क्या थी? पूरे द्वीप को अपने आप में एक किरदार बनाना। वाइड शॉट्स इसलिए लिए गए ताकि अकेलापन महसूस हो, जबकि क्लोजअप्स इतने लंबे रखे गए कि दर्शक हर चेहरे पर शक करने लगे। कई दृश्यों में बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत कम रखा गया ताकि खामोशी खुद सस्पेंस बन जाए। फिल्म की एडिटिंग पर खास मेहनत की गई थी, क्योंकि अगर एक रिएक्शन एक सेकंड भी जल्दी दिख जाता तो पूरा रहस्य कमजोर पड़ जाता। और यही वजह है गुमनाम सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं बल्कि शक करने की कला सिखाने वाली फिल्म भी बन गई। लेकिन कभी कभी हत्यारा सामने नहीं होता, राज किसी इंसान में नहीं एक जगह में छुपा होता है। क्या बताएंगे जरूर। फिलहाल आपके लिए सवाल यही था कि ऐसी कौन सी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है जिसे आप दोबारा उसके ट्विस्ट की वजह से देखना पसंद करेंगे।

वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी आवाज। थैंक यू सो मच पायल, थैंक यू सो मच बात करने के। बिल्कुल, वापस मुलाकात होगी आपसे। तो ये थी पायल, जिन्हें सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों का तो उतना शौक नहीं है पर किताबों का शौक है। तो आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगती है जिसका ट्विस्ट देखने के लिए आप दोबारा उस फिल्म को देख सकते हैं, दोबारा क्या, कई बार देख सकते हैं उस फिल्म को। फिलहाल चलिए गुप्त फिल्म का टाइटल ट्रैक सुन लेते हैं, कविता कृष्णमूर्ति, हेमा सरदेसाई और चेतन की आवाज में।

0: तो चलिए दोस्तों अब अगले कॉलर को भी ले लेते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छायालोक में।
1: मैं हावड़ा से सुप्रिया बोल रही हूँ।
0: जी सुप्रिया जी, कैसी है, घर परिवार में सब ठीक ठाक
1: है? सब ठीक ठाक है, आपका घर परिवार में?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आपकी दुआ है।
1: ठीक है,
0: बताइए।
1: फिल्म पे एक थ्रिलर फिल्म है राज।
0: राज, राज आप देख सकती हैं, राज आपको पसंद है?
1: बार बार देख सकते हो, आप 10 बार हो गया।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, ये तो
1: अभी टीवी पर देता है तो देखता हूँ, जो पीड़ा पशु का जो रोना जी डर लगता है।
0: ओके ओके, थैंक यू सो मच। और कोई पर्टिकुलर गाना सुनना चाहेंगे?
1: लाल दुपट्टा मलमल का से अब दवा की जरूरत नहीं है, वो गाना सुना दीजिए।
0: ओके ठीक है। और साथ ही वैसे तो सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का गाना होता तो अच्छा, लेकिन राज फिल्म का गाना आपका जो फेवरेट वाला था वो शायद बच चुका है मेरे ख्याल से। चलिए कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, वापस मुलाकात होगी आपसे। ओके
1: बाय।
0: फिलहाल थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक जाके ही रिक्वेस्ट किया हुआ गाना है, इतने प्यार से तो फिर सुनना तो पड़ेगा ही। अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज़ में, चलिए सुन लेते हैं ये गाना।

0: अब चलिए दोस्तों एक ऐसी फिल्म की बात करते हैं जहां हवेली सिर्फ ईंट और पत्थरों की नहीं, यादों, खामोशी और अधूरे सच की बनी हुई थी। कोहरा। ये फिल्म का पूरा खेल एटमॉस्फेयर पर था। बड़े बड़े कमरे, लंबे गलियारे, धीमी रोशनी और हर फ्रेम में एक अजीब सी बेचैनी। जो मेकर्स थे इस फिल्म के, ऐसी लोकेशन चुनी थी उन्होंने जहां खालीपन अपने आप महसूस हो। लाइटिंग इतनी नियंत्रित रखी गई कि चेहरों का आधा हिस्सा रोशनी में हो और आधा राज में। एक्टर से कहा गया, ज्यादा रिएक्शन मत दीजिए, सस्पेंस चीख कर नहीं धीरे धीरे पैदा होता है। और कैमरा मूवमेंट्स भी तेज नहीं थे बल्कि बहुत शांत थे, जैसे कोई दूर से आपको देख रहा हो। और शायद यही वजह है कि कोहरा खत्म होने के बाद भी उसकी खामोशी देर तक चलती रहती है। लेकिन हर राज पुरानी हवेलियों में नहीं मिलता, कभी कभी वो एक सुनसान सड़क पर भी मिलता है। बात होगी इस बारे में भी, लेकिन पहले ले लेंगे हमारे कॉलर को। कौन है, चलिए देख लेते हैं। हेलो, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: Thank you so much.
2: आप जो टॉपिक दिया, इसलिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो हॉरर फिल्म का इंसिडेंट जो मैं दोबारा देखना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं बोलूँगा हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया के बारे में।
0: अरे वाह, उम्दा पसंद, बहुत अच्छी पसंद है आपकी।
2: जिसका इंसिडेंट है वो जो पहले गया प्रासाद में, आने के बाद मेन अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट होता है
0: जी,
2: जो सबको समझाता है, जो मंजुलिका का आत्मा वो सब टूटता है और घर का सामान। लेकिन वो जो अबोनी है वो डिटेक्टिव, वो इसका सॉल्व किया, ये एक मेंटल पेशेंट का कहानी है
0: जी। तो आप

0: आपके साथ, अगर आप मान लीजिए ऐसे ही कहीं पर जाए और वहां पे आपके साथ भी ऐसी कुछ घटना घटे, तो आप क्या करेंगे?
1: देखिए, मैं गोस्ट को विश्वास नहीं करता हूँ,
0: ऐसा
1: क्योंकि मैं साइंस को विश्वास करता हूँ।
0: ओके,
1: और ये एक साइंस और गोस्ट का कहानी है, विज्ञान और भूत का कहानी है,
0: अंधविश्वास की कहानी जी।
1: आत्मविश्वास जो हमारे मन का भूल है, जो कुछ कुछ बारे में, तो मैं विज्ञान के पक्ष में हूँ, विश्वासकर को पक्ष में नहीं हूँ, इसलिए मैं विज्ञान के पास ही रहूँगा।
0: ओके ओके, ठीक है। चलिए, तो फिर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं ये बताइए।
1: आपका पास है तो गुरु भलैया का कोई भी गाना सुना दीजिए।
0: और आप बताइए।
1: शायद और एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, दिल परदेसी हो गया का, का कोई भी गाना है तो आप सुना दीजिए
0: जी। ठीक है,
1: थैंक यू मैम,
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थे मोनिरुद्दीन दा, तो चलिए सुन लेते हैं गाना। बताया उन्होंने कि भूल भुलैया भी उनकी फेवरेट फिल्म्स में से एक है जिन्हें दोबारा देखना चाहेंगे, तो वो तो मेरी भी फिल्मों में एक है, पर और साथ ही साथ उसके गाने भी लाजवाब हैं। फिलहाल चलिए सुनना चाहते थे वो सुनिधि चौहान की आवाज़ में दिल परदेसी हो गया से ये गाना, और उसके बाद बैक टू बैक दूसरा गाना हम सुन लेंगे, भूल भुलैया का टाइटल ट्रैक नीरज श्रीधर की आवाज़ में।

0: भूल भुलैया के टाइटल ट्रैक के बाद समय हो गया है एक और फोन कॉल लेने का। चलिए देख लेते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो,
1: गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका सेलुलॉइड सुपर हिट्स में।
1: जी धन्यवाद दीदी, मैं पारस पंडित चुचरा हुगली से बोल रहा हूँ।
0: जी पारस जी, कैसे हैं, घर परिवार में सब ठीक ठाक?
1: जी दीदी सब ठीक है, स्वस्थ है, मस्त है, जबरदस्त है।
0: चलिए बिल्कुल, रहना भी चाहिए है ना।
1: जी दीदी आपके दुआ से सब ठीक है और आशा करता हूँ कि आप और अपने परिवार के साथ सब ठीक है।
0: एकदम बिल्कुल, आप लोगों की दुआ है, बिल्कुल ठीक है हम।
1: धन्यवाद दीदी, और सभी श्रोता भी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और आपके टीम भी स्वस्थ और मस्त रहे।
0: एकदम
1: दुआ करते हैं।
0: आप लोगों से बात होती है तो ऐसे ही दिन जबरदस्त हो जाता है।
1: जी जी जी दीदी, आपसे बहुत दिनों बाद बात हुई, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: थैंक यू सो मच।
1: दिल गार्डन गार्डन हो गया
0: हमारा भी।
1: जी धन्यवाद दीदी। तो मैं पुराने फिल्म देखता था, जैसे पुराना मंदिर हुआ, और उसके बाद मतलब उस समय का जितने भी 90s के पहले जो भूत प्रेत का पिक्चर होता था तो देखता था, तो थोड़ा बहुत डर लगता था बचपन में, लेकिन जैसे जैसे मतलब उम्र बढ़ता गया तो इन सब चीजों से मतलब डर लगना दूर हो गया।
0: अच्छा, ओके।
1: और मुझे सबसे अच्छा लगा था जानी दुश्मन पिक्चर।
0: अच्छा,
1: पुराना पुराना वाला
0: जो था।
1: जी जी पुराना वाला जानी दुश्मन, वो बहुत ही अच्छा लगा था।
0: ओके,
1: वो पिक्चर मतलब देखकर मतलब जब अमरीश पुरी का नया मतलब ट्रेन पर जो किताब भूतों का किताब पढ़ रहा था तो उस समय बहुत डर लग रहा था, और संजीव कुमार का लाल जोड़े में देखकर उसका भूत प्रेत बन जाना वो भी एक अलग मतलब ये था।
0: ओके ओके, ऐसी पुरानी बहुत सारी फिल्में हैं जो काफी अच्छी बनी थी उस वक्त के हिसाब से, है ना।
1: मंदिर हुआ और हवेली नहीं
0: क्यों, और भी पुरानी फिल्में हैं, गुमनाम है, वो कौन थी,
1: गुमनाम
0: ये सब
1: महल
0: बहल जी महल तो पुरान बहुत ही पुरानी है,
1: बहुत पुरानी पिक्चर है।
0: तो बताइए फिर आप रीसेंट में कौन सा फिल्म देखे हैं?
1: रिसेंटली हम

0: स्त्री का दोनों पिक्चर ही देखे, स्त्री वन और स्त्री टू।
1: ओके, कौन सा अच्छा लगा आपको?
0: स्त्री वन मुझे अच्छा लगा, और मुझे स्त्री टू का एक गाना सुना दीजिएगा
1: जी,
0: रात रात बाकी वो गाना है वो वाला सुना दीजिए।
1: ओके चलिए ठीक है, ठीक है पारस जी,
0: गुड नाइट, फिर बात होगी। अब फिर कब आइए?
1: मैं कल ही वापस आ रही हूँ, आप लोग
0: धन्यवाद,
1: थैंक यू सो मच फोन करने के लिए, फिर मिलते हैं,
0: गुड नाइट, फिर मिलेंगे,
1: गुड नाइट। तो ये थे पारस पंडित हमारे साथ, और सुनना चाहते हैं स्त्री टू से आज की रात, सुनेंगे जरूर, पर उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: सेल्यूलॉइड सुपर हिट्स।
2: इस छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं लेकर छाया लोग स्टूडियो की घड़ी। समय बता रही है 8:03 और आज बातें हो रही है भाई सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों के बारे में। दोस्तों रात जितनी गहरी होती जाती है कहानियां उतनी ही उलझती जाती हैं। अब तक हमने देखा है कि एक घर, एक टापू और एक हवेली कैसे अपने अंदर राज छुपा सकती है, लेकिन अब हम उस मोड़ पर है जहाँ एक चेहरा पूरी कहानी बदल देता है। एक ऐसा चेहरा जो दिखता है लेकिन समझ नहीं आता आखिर वो कौन है। साल था 1964 और एक फिल्म आई थी जिसने ये साबित कर दिया कि सस्पेंस के लिए धमाकेदार एक्शन नहीं बस सही टाइमिंग चाहिए। वो कौन थी? एक सुनसान सड़क, बारिश, रात और सफेद कपड़ों में खड़ी एक रहस्यमय लड़की। बस यहीं से शुरू हो जाता है दर्शकों के दिमाग का खेल, बिहाइंड द सीन्स। बिहाइंड द सीन्स अगर बात करें इस फिल्म की तो कुछ ऐसा था कि इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत उसकी सिंप्लिसिटी थी। हर सीन बार बार रिहर्स किया जाता ताकि कार ठीक उसी जगह रुके, कैमरा ठीक उसी एंगल पर हो और एक्ट्रेस का एक्सप्रेशन एकदम नपातुला। न ज्यादा मुस्कान, न ज्यादा डर, बस इतना ही कि दर्शक पूरी फिल्म में यही सोचता रहे क्या ये सच है या सिर्फ भ्रम। लाइटिंग में भी कमाल की सावधानी रखी गई, व्हाइट कॉस्ट्यूम, डार्क बैकग्राउंड और हल्की सी धुंध, फॉग, इन तीन चीजों ने उस किरदार को इतना यादगार बना दिया कि आज भी सफेद साड़ी में सुनसान सड़क पर कोई खड़ा दिख जाए तो सबसे पहले याद इसी फिल्म की आती है और यही एक सस्पेंस फिल्म की सबसे बड़ी जीत होती है। लेकिन हर राज खामोशी में नहीं छुपता, कुछ राज संगीत में भी छुपते हैं। क्या है वो राज, बात करेंगे उस बारे में भी, पर सुन लेंगे उससे पहले गाना।

अब चलते हैं एक ऐसे फिल्म की तरफ जिसे लोग उसके गानों के लिए याद करते हैं, लेकिन उसकी कहानी उतनी ही शानदार मिस्ट्री भी थी। तीसरी मंजिल पहली नजर में एक म्यूजिकल एंटरटेनर था, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती एक हर किरदार संदेह के घेरे में आ जाता। बिहाइंड द सीन्स कुछ यूं थे कि डायरेक्टर चाहते थे कि सस्पेंस सॉन्ग्स के बीच कहीं खो न जाए, इसलिए हर गाने के बाद स्टोरी को एक नया मोड़ दिया गया। एडिटिंग इतनी क्रिस्प रखी गई कि ऑडियंस कभी पूरी तरह आराम महसूस ही ना करे। शमी कपूर के एनर्जेटिक सीन्स और सस्पेंस वाले सीक्वेंसेस तो बिल्कुल अलग मूड्स थे, लेकिन उन्हें इस तरह जोड़ा गया कि कहानी कहीं टूटती नहीं। कैमरा कई बार कैरेक्टर्स के पीछे चलता जैसे कोई उनका पीछा कर रहा, और यही एहसास पूरी फिल्म में बना रहता। तीसरी मंजिल ये सिखाती है कि सस्पेंस हमेशा अंधेरे में नहीं मिलता, कभी कभी तेज रोशनी और तेज संगीत के बीच भी मिल जाती है। सबसे बड़ा राज छुपा होता है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। 90 का दशक और सस्पेंस पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है। 1997 एक ऐसी ही फिल्म थी आई थी जिसने दर्शकों को आखिरी 5 मिनट तक गलत दिशा में सोचने पर मजबूर रखा। गुप्त एक मर्डर, कई सस्पेक्ट्स और हर नए सीन्स के साथ बदलता हुआ शक। फिल्म की सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि क्लाइमेक्स किसी भी तरह से लीक ना हो, कि स्क्रीन प्ले की पूरी जानकारी पूरी बहुत सीमित लोगों के पास ही, ताकि ट्विस्ट आखिरी दिन तक राज बना रहे। एडिटिंग रूम में कई वर्जन्स तैयार किए गए ताकि कहीं भी कोई ऐसा संकेत न रह जाए जिससे ऑडियंस पहले ही सच तक पहुंच जाए, और बैकग्राउंड स्कोर धीरे धीरे टेंशन बढ़ाता, कभी आपको डराता नहीं, बस ये एहसास दिलाता कि कुछ बहुत बड़ा आपकी नज़र से छूट रहा है। और जब फाइनल रिवील सामने आता है तो एहसास होता है कि सारे जवाब शुरू से आपके ही सामने थे, लेकिन आपने उन्हें देखा ही नहीं। यही एक बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर की पहचान है। लेकिन अगर कातिल सामने भी हो और फिर भी आप उसको पहचान ना पाए तो बात करेंगे इस बारे में भी, पर सवाल मेरा वही रहेगा कि ऐसा कौन सा सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है जो आपने देखा और एक बार देखने के बाद बार बार चाहते हैं कि आप उसको देखें। बताइए हमें, फोन लाइंस खुली हुई हैं। फिलहाल चलिए सुनते हैं फिल्म दुश्मन से कुमार शानू और लता मंगेशकर के आवाज़ में ये प्यारा सा गाना।

तो जैसे कि दोस्तों बातें हो रही थी कि अगर कातिल सामने भी हो और फिर भी आप उसे पहचान न पाए, तो यहीं से सस्पेंस एक नए दौर में प्रवेश करता है जहां कहानी कमरों में नहीं दिमाग के भीतर घटती है और अगली फिल्म इसी सफर की शुरुआत है। कहते हैं सबसे मुश्किल लड़ाई दो लोगों के बीच नहीं अपने ही दिमाग के भीतर होती है, क्योंकि बाहर का दुश्मन दिखाई नहीं जाता है लेकिन जो आपके मन में छिपा हो उसे पहचानना आसान नहीं होता। और अब हम उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां सस्पेंस सिर्फ किसने किया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि क्यों किया, क्या सचमुच किया जैसे सवाल ज्यादा बड़े हो गए। साल 1999 में आते हैं जब सिर्फ 3 करदार, 1 घर, 1 पूरी रात। फिल्म का नाम कौन? राम गोपाल वर्मा की इस फिल्म ने यह साबित कर दिया कि सस्पेंस लोकेशन से नहीं लिखावट से पैदा होता है। पूरी फिल्म लगभग एक ही घर में शूट की गई ताकि दर्शक भी उसी घर में कैद महसूस करे। कैमरा कभी तेज नहीं भागता, धीरे धीरे कमरों में घूमता जैसे उसे भी यकीन न हो कि अगला पल क्या लेकर आएगा। एक्टर्स को ओवर एक्टिंग से पूरी तरह दूर रखा गया क्योंकि इस कहानी में डर नहीं कन्फ्यूजन सबसे बड़ा हथियार था। हर डायलॉग ऐसे लिखा गया कि उस पर भरोसा भी हो और शक भी। यही वजह है कि कौन खत्म होने के बाद दर्शक फिल्म दोबारा देखने का मन बनाते हैं ताकि जो पहली बार छूट गया वो दूसरी बार दिखाई दे। लेकिन कभी कभी दुश्मन किसी दूसरे इंसान में नहीं अपने भीतर भी होता है। और यही हम चले आते हैं साल 2001 में। बात करेंगे अगली फिल्म के बारे में, पर सुन लेंगे उससे पहले अगला गाना भी। और आपसे मेरा सवाल वही रहेगा कि ऐसे कौन सी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है जिसे आप बार बार देखना चाहेंगे। फोन लाइंस खुली हुई आपके लिए, चलते हैं आगे, सुनते हैं फिल्म मर्डर से अमीश जमाल के आवाज में हमारा अगला गीत।

चलते हैं साल 2001 की ओर और एक बिल्कुल अलग तरह का प्रयोग, अक्स। ये फिल्म सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक संघर्ष की कहानी भी थी। डायरेक्टर चाहते थे कि हर फ्रेम थोड़ा असहज लगे, लाइटिंग जानबूझकर नेचुरल नहीं रखी गई। कई सीन्स में रंगों का इस्तेमाल कैरेक्टर की मानसिक स्थिति दिखाने के लिए भी किया गया। कैमरा एंगल सीधे कम और थोड़ा टेढ़े ज्यादा रखे गए ताकि दर्शक के मन में बेचैनी बनी रहे। एक्टर से कहा गया, डायलॉग्स बोलने से पहले उस साइलेंस को महसूस कीजिए, क्योंकि कई बार खामोशी शब्दों से ज्यादा बोलती है। अक्स हर किसी की पसंद नहीं बनी, लेकिन जिसने इसे समझा वो आज भी इसे हिंदी सिनेमा की सबसे साहसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स में गिनता है। और अब एक ऐसी फिल्म जहां हर फैसला एक नई मुसीबत बन जाती है। साल 2007 की ओर चलेंगे, पर उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हुए अगला गाना भी सुन लेंगे। मन

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

चलते हैं साल 2007 की ओर, जब एक सूटकेस, कुछ दोस्त और लालच। जी हाँ, जॉनी गद्दार पहली नजर में एक सिंपल क्राइम स्टोरी, लेकिन असल खेल यहीं से शुरू होता है। डायरेक्टर श्रीराम राघवन चाहते थे कि ऑडियंस हीरो के साथ रहे, भले ही वो गलत हो, इसलिए कैमरा अक्सर उसी की नजर से दुनिया दिखाता। एडिटिंग तेज रखी गई ताकि हर गलती के बाद अगली परेशानी फौरन सामने आ जाए। फिल्म में कई विजुअल क्लूज जानबूझकर छोड़े गए, जो पहली बार देखने पर शायद न दिखे, लेकिन दूसरी बार पूरी कहानी बदल देते हैं। यही वजह है कि जॉनी गद्दार हर बार देखने पर कुछ नया दे जाती है। लेकिन अगर राज किसी इंसान ने नहीं, एक मशीन ने छुपाया हो तो साल 2009 की बात है, बताते हैं आपको। फिलहाल सुन लेते हैं अगला गाना, और बैक टू बैक दो गाने होंगे इस बार दोस्तों।

तो दोस्तों साल 2009 को एक ऐसा कंसेप्ट आया जो उस दौर के लिए बिल्कुल नया था, 13B, एक नया घर, एक नया परिवार और एक टीवी सीरियल जो अपनी उनकी जिंदगी दिखाने लगता है। फिल्म की सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि एक साधारण टीवी दर्शकों को डरावना नहीं रहस्यमय लगे। टीवी वाले सीन्स और रियल सीन्स फ्रेम बाय फ्रेम मैच किए गए ताकि दोनों दुनिया एक जैसी महसूस हो, और साउंड डिजाइन बहुत ही सरल रहा था। कोई तेज धमाका नहीं, बस धीरे धीरे बढ़ती हुई बेचैनी। लीड एक्टर्स को कई सीन्स में खाली स्क्रीन देखकर रिएक्ट करना पड़ा क्योंकि बाद में विजुअल इफेक्ट्स जोड़े जाने थे, लेकिन रिएक्शन इतना सच्चा था कि दर्शक भी उस रहस्य का हिस्सा बन गया। 13 भी ये साबित करती है कि सस्पेंस कभी कभी सबसे सामान्य चीजों में भी छिपा रह सकता है। एक घर, एक लिफ्ट या आपके ड्राइंग रूम का एक टीवी, लेकिन अब सस्पेंस और भी ज्यादा जमीन से जुड़ने लगा है। न भूत, न भ्रम, न कोई अलौकिक शक्ति, बस एक शहर, एक पुलिस अफसर और एक ऐसा जोर जो हर जवाब मिलने के बाद भी दिल को भारी कर देता है। करेंगे इस बारे में बातें अगले पड़ाव में, पर उससे पहले सुन लेंगे हमारा अगला गाना, की सुनिधि चौहान की आवाज में।

तो दोस्तों चलिए बात करते हैं फिल्म तलाश की, जहां रहस्य सिर्फ केस में नहीं इंसान के भीतर भी छुपा है। कुछ कहानियां सिर्फ इसलिए याद नहीं रहती कि उनका अंत चौंका देता है, बल्कि इसलिए क्योंकि सच सामने आने के बाद हम खुद से एक सवाल पूछते हैं, मैं इसे पहले क्यों नहीं समझ पाया। यही एक बेहतरीन सस्पेंस फिल्म की पहचान है, जहां जवाब शुरू से हमारे सामने होता है लेकिन हमारी नजर कहीं और उलझी रहती है। साल 2012, एक शहर जो कभी पूरी तरह सोता नहीं, एक पुलिस अफसर जो अपने अतीत से भाग नहीं पा रहा, एक ऐसी तलाश जो सिर्फ एक अपराधी की नहीं अपने भीतर छिपे अपराध बोध की भी थी। तलाश डायरेक्टर रीना कांगटी चाहती थी कि मुंबई सिर्फ लोकेशन न लगे बल्कि पूरी कहानी का हिस्सा बन जाए, इसलिए ज्यादातर अहम दृश्य रात में शूट किए गए। बारिश से भीगी सड़कें, खाली फ्लाईओवर, पीली स्ट्रीट लाइट और हर फ्रेम में एक अजीब सी तन्हाई। लीड एक्टर ने कई पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की ताकि उनके बॉडी लैंग्वेज और इन्वेस्टिगेशन स्टाइल बनावटी न लगे। सिनेमाटोग्राफी में लो लाइट फ्रेम्स का इस्तेमाल जानबूझकर किया गया ताकि हर दृश्य एक अनकहे बोझ का एहसास कराए, और शायद इसी वजह से तलाश एक मर्डर मिस्ट्री से कहीं आगे निकल जाती है। ये एक इंसान के भीतर चल रही खामोश लड़ाई बन जाती है, लेकिन अगर सच जाने निकला इंसान खुद पूरी तरह बदल दे तो बताएंगे इस बारे में भी, पर पहले सुन लेंगे फिल्म तलाश का ही गाना।

0: ऐसे में हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं वो। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सेलुलर सुपर हिट्स में।
1: गुड इवनिंग जी, मैं जीतू बात कर रहा हूँ ऋतुराज।
0: हाँ जीतू, कैसे हो, सब ठीक ठाक
1: जी? बिल्कुल जी, मैं ठीक हूँ, और आप कैसी हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घर परिवार में सब ठीक है ना?
1: सब एकदम मस्त और बहुत ठीक है। और आज तो मैं रेडियो में प्रोग्राम नहीं सुन पा रहा हूँ, खराब हो चुका है, मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं भर रहा है।
0: अच्छा।
1: तो मैं न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर सुन रहा हूँ, और मैं अपने आप से नहीं सुन पाऊंगा और मेरे घर वाले भी नहीं सुन पाएंगे।
0: कोई बात नहीं, अब दूसरा फोन ऑन कर लिया कीजिएगा घर वालों का।
1: ओके जी, ठीक है, चार्ज तो होना चाहिए, चार्ज भी तो नहीं है सबका, मतलब फोन अपना पास रहता है, बिजी रहता है अपना का फोन लेकर। तो आज मैं यही बोलना चाहूँगा जी, आपका टॉपिक पे एक फिल्म है, फिल्म का नाम है डर
0: जी।
1: इसमें जो स्टार्टिंग में दिखाता है तो लगता ही नहीं कि मतलब जो है हीरो है शाहरुख खान, वैसे मतलब विलन का मतलब किरदार, मतलब शाहरुख खान हीरो होंगे। लास्ट में लेकिन पता चलता है क्विज में होता है, मतलब क्विज जो आता है शाहरुख खान जो है जी चावला जी को मतलब तंग करती है, और तो मतलब प्यार के चक्कर में मतलब विलन ही है लास्ट में पता चलता है
0: जी जी जी।
1: और फिल्म का हीरो है सनी देओल
0: जी,
1: तो फिल्म मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, ये फिल्म एक्चुअली में काफी अच्छी थी, काफी अच्छी थी। तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: जी बिल्कुल, यही इसी फिल्म से मैं सुनना चाहूंगा, सॉन्ग का नाम है
0: जादू तेरी नजर।
1: जी बिल्कुल जी,
0: हाँ चलिए ठीक है, सुनवाते हैं आपको ये गाना। ओके, मिलते हैं फिर जीतो।
1: और अगले दिन मैं सुनूंगा तो लाइव मतलब ज्यादा बातें करेंगे, क्योंकि आज मैं सुन नहीं पा रहा हूँ अपने आप को, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है।
0: कल वापस आऊंगी, कल
1: मतलब रेडियो में सुनना मतलब इसको अच्छा मतलब लगता है।
0: एकदम एकदम एकदम बिल्कुल,
1: ठीक है जी, थैंक यू,
0: कल वापस मिलेंगे आपसे। चलिए
1: ओके, थैंक यू,
0: बाय। तो जीतू की रिक्वेस्ट, जादू तेरी नजर, तो चलिए सुन लेते हैं जादू तेरी नजर फ्रॉम द फिल्म डर।

दोस्तों, जिस साल तमाशा आई थी उसी साल एक और फिल्म आई थी जिसने पूरे देश को आखिरी कुछ मिनट तक उलझाए रखा। कहानी एक गर्भवती महिला, कोलकाता की भीड़ और एक लापता आदमी। इतना साधारण सा प्लॉट लेकिन अंदर परत दर परत रहस्य। फिल्म को ज्यादातर रियल लोकेशंस पर ही शूट किया गया था ताकि भीड़ बनावटी न लगे। दुर्गा पूजा के दौरान कई सीन्स असल माहौल में फिल्माए गए जिससे हर फ्रेम जीवंत महसूस होता है। कैमरा अक्सर मुख्य किरदार के पीछे चलता है जैसे दर्शक भी उसके साथ सच की तलाश में हो। डायरेक्टर ने ट्विस्ट को बचाने के लिए स्क्रिप्ट की जानकारी बहुत सीमित लोगों तक रखी और यही वजह कि जब आखिरी सच सामने आता है तो दर्शक एक पल के लिए बिल्कुल शांत रह जाता है। लेकिन अपराध हत्या नहीं होता, कुछ अपराध दिमाग से भी किए जाते हैं।

साल 2015 की बात है, एक साधारण सा परिवार, एक केबल ऑपरेटर और एक ऐसी रात जो पूरी जिंदगी बदल देती है। दृश्यम। डायरेक्टर निशिकांत कामत ने पूरी कोशिश की कि हर किरदार बिल्कुल आम लगे, कोई हीरोइक एंट्री नहीं, कोई बड़े डायलॉग्स नहीं, बस ऐसे लोग जो आपके हमारे किसी भी पड़ोस में मिल सकते हैं। फिल्म में घड़ी, कैलेंडर और डेट्स पर बहुत बारीकी से काम हुआ था, क्योंकि पूरी कहानी टाइम लाइन पर टिकी हुई थी। एडिटिंग के दौरान छोटी सी कंटिन्यूटी भी बहुत मायने रखती थी और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनी। जब आखिर में सच सामने आया तो आपको एहसास होता है कि डायरेक्टर शुरुआत से ही आपको वहीं ले जा रहे थे, लेकिन आपने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन हर कहानी इसी सलीके से ख़त्म नहीं होती, कुछ कहानियाँ जख्म भी छोड़ जाती हैं। ऐसा ही कुछ दृश्यम 2 में भी आपको देखने को मिलेगा। और देखते ही देखते देखिए दोस्तों, बातें करते करते, गाने सुनते सुनते टाइम कब बीत गया समझ ही नहीं आया। जाने का वक्त हो चला है। स्टूडियो की सुइयां, घड़ी की सुइयां बता रही है कि अब बातें बंद करके आखिरी गाना आपके लिए छोड़कर मैं निकल पड़ूँ स्टूडियो से बाहर, क्योंकि अगर आज का वक्त नहीं बीतेगा तो कल वापस कैसे आएंगे हम, है ना। कल वापस होगी मुलाकात, आप सभी से ढेर सारी बातें होंगी। आप भी रेडी रहिएगा अपने रिक्वेस्ट के साथ।

और साथ ही साथ बहुत मज़े करेंगे हम एक साथ मिलकर। तो फिलहाल के लिए, जब तक आपसे वापस मुलाकात नहीं होती, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस वेदर में अपना, अपनों का, सबका ख्याल रखें। खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। फिलहाल के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। यही कहते हुए मैं छोड़े जा रही हूँ खामोश या फिल्म का टाइटल ट्रैक आप सभी के लिए। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय और मिलते हैं वापस कल।

अनुष्ठान प्रचारित हो 107 एफएम रेनबोए आपके लिए हिंदी छायाछबिर गायर अनुष्ठानी परेर गान श्रीराम एवं शिल्पा रावेर कंठे ये जवानी है दीवानी फिल्म थेके।

अनुष्ठान सुनछेन 107 एफएम रेनबोए आपके लिए हिंदी छायाचित्र गानेर अनुष्ठानेर परेर शिल्पी कुणाल कांजावाला क्यों की फिल्म थेके।